लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत एक ही रास्ता। इस फिल्म से अभी आपने सुना, 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, पानी की जरूरत, जल की जरूरत हम सभी को होती है, इंसानों को होती है, पशु पक्षियों जीव जंतुओं को, और इस धरती को तो सबसे ज्यादा होती है। धरती को यदि उचित रूप से बारिश नहीं मिलेगी, जल सिंचाई नहीं मिलेगी, तो भाई खेत कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे लहलहाएंगे? और अगर खेतों की प्यास बुझ जाए तो बिल्कुल अच्छे से मुस्कुराएंगे वो भी। इसी गीत में इसी तरह की सुंदर बात का समावेश।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत लव इन शिमला फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। साथियों, इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। साथियों, इस धरती पर हमें लाने वाले हमारे माता पिता, हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे माता पिता, सबसे न्यारे प्यारे आदरणीय माता पिता, उन्हें प्रणाम करता, उनके सुख की कामना करता हुआ आइए ये सुंदर गीत सुनते हैं।

आशा भोसले के स्वर से सजा ये गीत आपने सुना, मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम आपकी परछाइयां, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। साथियों, सुहानी भोर का उदय हम सबको नव चेतना नव ऊर्जा दे रहा है। आइए स्वागत करें इस नव प्रभात का, नव भोर का, भोर सुहानी का।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत संत ज्ञानेश्वर फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। और अब आज के बोर जुबानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत सज रहा है।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। 1959 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। इसी गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस The public examinations prevention

0: వింటూనే ఉండండి ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 నిలయంలో సమయం 7:30 కావస్తుంది. బ్రాడ్కాస్ట్ డైలీ హైలైట్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రేడియో రిపోర్ట్ ఆన్ ద కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 ప్రోగ్రామ్ అంటారు.
1: नमस्कार. खेल सिर्फ पसीने और पदकों का हिसाब नहीं है, खेल कहानी है उस अजेय इच्छा शक्ति की जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है. ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026, जहां खिलाड़ी पगडंडियों से निकलकर इतिहास रचने पहुंचे हैं, जहां हर एक सेकेंड, हर एक छलांग और हर एक पंच के पीछे बरसों का त्याग और अनगिनत उम्मीदें जुड़ी हैं. ग्लासगो के एरेना में जब दुनिया भर के 74 देशों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे हैं, तो प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि खुद के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी होती है. यहाँ गिरना हार नहीं बल्कि उठकर दोगुनी ताकत से पलटवार करने की सीख है.
2: ग्लासगो की 18 डिग्री सेल्सियस की हड्डियों को सिहरा देने वाली ठंड और इस सर्द मौसम के बीच भी राष्ट्रमंडल खेलों के मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना लगातार बह रहा है. इस महासंग्राम में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने हुनर और संयम के दम पर बस एक ही लक्ष्य के लिए जी जान लगा रहे हैं, देश के लिए एक अदद मेडल. पदक के लिए मचे इस रोमांचक घमासान के बीच खेलों के चौथे दिन आखिरकार भारत का स्वर्णिम खाता खुल ही गया.
3: Indeed, India's golden journey in the Glasgow Games began with the unflappable Mirabai Chanu comfortably defending her 48 kg title in weightlifting.
2: आइए जानते हैं 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे

0: दिन क्या क्या हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर खेल प्रेमी को इंतजार था। भारत के स्वर्णिम अभियान का आगाज उस नाम ने किया जिसने हर बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की सबसे बड़ी स्टार साई खोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
1: हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी के ही आंसू है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए।
0: जैसे ही पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया वो क्षण हर भारतीय के लिए गौरव से भर उठने वाला बन गया।
2: The legendary Mirabai began her title defense run with a failed attempt at lifting 82 kgs in the snatch before succeeding in lifting the weight. She then went on to set a Commonwealth Games record with a lift of 85 kilos, 10 kgs ahead of her nearest rival's best lift. The rift widened in the clean and jerk section as the Tokyo Olympic silver medalist succeeded in lifting 105 kilos in her second attempt to complete a total lift of 190 kgs and rise to the top of the podium as the tricolor fluttered proudly. She finished 22 kgs ahead of the silver medalist Ruth Nyong of Nigeria.
0: इस स्वर्णिम जीत के साथ साई खोम मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार राकेश थपलियाल कहते हैं,
3: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है मीराबाई चानू का और ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी, तब वो 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2022 में 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब 2026 में 48 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है। मीराबाई चानू की जो कंसिस्टेंसी है वो एक बड़ी गजब की रही है कि लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये गोल्ड मेडल की शुरुआत यहाँ पर हो गई है।
0: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में मेडल के लिए अपनी प्रबल दावेदारी का परिचय भी दे दिया।
1: ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाला है तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे।
4: सच कहा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन वेट लिफ्टर्स के नाम रहा। मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया लेकिन उससे पहले पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांता सिंह ने अपनी चुनौती रखी। मणिपुर के वेटलिफ्टर ने निराश नहीं किया। कुल 271 किलो वजन उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले ऋषिकांता ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सिल्वर मेडल दिलाया। ऋषिकांता ने तीसरा प्रयास 121 किलो का सफलतापूर्वक हासिल किया और इसके साथ ही स्नैच में अपनी वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इन मलेशिया के अनिक कसदार ने भी अपने तीसरे प्रयास में इतना ही वजन उठाया। फिर बारी आई क्लीन एंड जर्क की, उन्होंने तीसरे प्रयास में 151 किलो भार उठाने की कोशिश की लेकिन बाजुओं ने फिर साथ नहीं दिया। अनिक अपने तीसरे प्रयास में 152 किलो वजन उठाकर न सिर्फ ऋषिकांता से काफी आगे निकल गए बल्कि गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ओवरऑल 273 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे ऋषिकांता।
5: पहले मैं बहुत खुश हूँ सभी मिल के, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर एंड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, सभी ने हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इंडियन मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
4: भारत को दिन का दूसरा सिल्वर मेडल भी वेटलिफ्टिंग से मिला। ऋषिकांता के बाद मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। राजा और मलेशिया के मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार मलेशिया के बिदिन 299 किलो के कुल वजन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। राजा को 286 किलो के कुल वजन के साथ सिल्वर मेडल मिला। भारतीय मुक्केबाजों का दम कल दुनिया ने देखा। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की प्रीति का मालवी की मुक्केबाज देवरा मेटन

0: संजय के पास कोई जवाब ही नहीं था। पावरफुल प्रीति ने शुरुआत से ही विरोधी पर ताबड़तोड़ पंच चढ़े। इस तरह भारतीय मुक्केबाज आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी।
1: इट्स रियली नाइस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम बिकॉज इट डज बेटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग, सो रियल नाइस।
0: पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भी जादूमणि सिंह के मुक्कों का उनके प्रतिद्वंदी सुमामा रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। सटीक आक्रमण और शानदार बचाव के जरिए जादूमणि ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। राउंड ऑफ 16 में जीत के साथ जादूमणि भी जादुई प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में पहुंच गए। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आदित्य प्रताप यादव को राउंड ऑफ 16 के नजदीकी मुकाबले में उगांडा के बट्टे नुहू से 3-2 से हार मिली।
2: और अब बात लॉन बॉल्स की। भारत की रूपा रानी और पिंकी को दिन में खेले गए महिला पेयर्स के पहले मुकाबले में पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को टाई ब्रेकर में 3-0 से मात दे दी। इस हार के बावजूद भारत की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी, लेकिन देर रात हुए दूसरे आखिरी ग्रुप मुकाबले में विमेन्स पेयर्स के सेक्शनल मुकाबले में पिंकी और रूपा की जोड़ी एक सेट से आगे होने के बावजूद टाई ब्रेक में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। वहीं पुरुषों के लॉन बॉल्स के मुकाबले में भारत के पुतुल सोनोवाल को रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष एकल लॉन बॉल स्पर्धा के सेक्शनल मुकाबले में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पुतुल का आगे बढ़ने का सपना खत्म हो गया।
3: In swimming, the men's 4x200 relay team made it to the final before coming 6th in the event. Meanwhile, Tapan Mohanty finished 15th out of 18 finalists in the men's all-round final in gymnastics with a combined score of 70.100.
0: ग्लासगो में जिन खेलों में भारत की इस बार पदक की सबसे ज्यादा दावेदारी है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। एथलेटिक्स में सबसे पहले ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में उतरेंगे। उन्होंने हाल में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का समय का बैरियर तोड़ा है। आज ही लॉन्ग जंप में भारत के पदक की बड़ी उम्मीद मुरली शिशंकर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में फील्ड पर होंगे। शिशंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था। 110 मीटर हर्डल रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले तेजस सिरसे भी खेलों के 5वें दिन मेडल की बड़ी उम्मीद होंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक के लिए दोबारा देर रात ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस हाई जंप में भी आज मेडल मुकाबला होगा। भारत की तरफ से सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम ज्योति शंकर और तेजस्वी शंकर की चुनौती होगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कुशारे देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने इसी महीने मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ऐतिहासिक तीसरा स्थान हासिल किया था। बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तेजस्वी शंकर भी इस साल पदक का रंग बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। ज्योति शंकर की चुनौती को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की तगड़ी चुनौती रहने वाली है। विमेन्स शॉटपुट F57 कैटेगरी में शिल्पा KS और शर्मिला पदक के लिए अपना सारा हुनर और ताकत झोंक देंगी। पुरुषों की T38 कैटेगरी की 100 मीटर रेस में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। साल 2026 भी उनके लिए खास रहा है। इस साल उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता।
3: Let's now take a look at what will be a busy day for Indian boxers today at the Commonwealth Games. In the 60 kg category, Sachin Siwach will take on England's Will Hewitt. The 2016 World Youth Champion and 2026 Asian Championship silver medalist uses his 5'10" frame for a sharp back foot counter punching style and is riding high on form and confidence. Coming off a solid 4-1 win over former CWG medalist Canada's Al Ahmadiyya, his long reach will be key to keeping the aggressive home favourite Hewitt at bay. Meanwhile, Ankush Panghal will take on Zalan Jan of Antigua in the men's 80 kg category. The reigning 2026 national champion in the light heavyweight division is a heavy-handed front foot pressure fighter with strong inside footwork. He will be making his games debut and Ankush will look to establish control early with body shots against Zalan Jan. Meanwhile, in the women's section, Sakshi Chaudhary will be taking on on Lethabo Modukanele from Botswana in the 51kg weight division. Sakshi comes into the event as a strong medal contender. Her high volume and relentless pace makes her a strong favourite against Botswana's experienced Modukanele if she gets

0: into a rhythm from round one. Back in the men's segment, Sumeet Kundu will also be in action against John McConnell of Northern Ireland. Sumeet got a bye in the round of 32, and against Northern Ireland's John McConnell, he will be facing a tough challenge. He relies on his high tempo inside game and power combinations, and this will be a matchup to look out for.
1: आज का दिन भारतीय तैराकी और पैरा तैराकी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूल में भारत के कई खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे और देश को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अनुभवी तैराक सजन प्रकाश एक बार फिर पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उतरेंगे। पहले हीट में उनका लक्ष्य फाइनल का टिकट हासिल करना होगा, जबकि क्वालिफाई करने पर देर रात होने वाले फाइनल में उनकी नजर पदक पर रहेगी। वहीं युवा तैराक आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फास्टेस्ट हीट में उतरेंगे, जहां लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण रेस में उनका धैर्य और गति दोनों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही पैरा स्विमिंग में भी भारत की उम्मीदें स्वातिक पाटिल पर टिकी होंगी। स्वातिक पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB9 वर्ग की हीट में हिस्सा लेंगे और शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए पदक जीतने की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूल में भारत के लिए हर रेस बेहद अहम होगी। सजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और स्वातिक पाटिल के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। उम्मीद होगी कि ये खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाए बल्कि भारत के पदक अभियान को भी नई रफ्तार दे दें।
0: More medals in weightlifting will be on the cards today as the Indian lifters aim to continue the momentum. Gyaneshwari Devi will be making her debut in the Commonwealth Games and taking part in the 53 kg category. She won bronze at the Asian Championships and her personal best of 194 kilos makes her the top-ranked lifter in the Commonwealth. Meanwhile, Vindhyarani Devi, a silver medalist at Birmingham, will be looking to make it two podiums in two as she enters the stage in the 58 kg final. In the men's segment, Valluri Ajaya Babu will be the dark horse in the 79 kg category.
2: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में वुमेन वॉल्ट में भारत की प्रतिष्ठा समानता की चुनौती होगी।
0: Now, let's take a look at the medals tally. Australia top with a grand total of 39 medals and England are a distant second right now. India meanwhile with 4 medals and 1 gold are now at the 8th position as the action heats up.
1: आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ वापस जुड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा अपडेट के साथ इसी समय पर। तब तक हमारी पूरी टीम प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी, संपादक वन्ना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मैं कविता शर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
3: भारत को एक से जीत गया भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
4: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
5: स्पोर्ट्स पल्स।
6: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। खेलों के मैदान पर हमेशा की तरह हलचलें चल रही हैं, खेलों की दुनिया

0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 टू 3 पीएम एवरी डे ऑन एफएम रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9. Well, तो आज मंडे है ना, मतलब मंडे को लोग अक्सर कहते हैं कि वीकेंड इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। लेकिन सोचिए, अगर हर मंडे एक फ्रेश स्टार्ट भी तो लेकर आता है अपने साथ, नए प्लान्स हो जाए या नई गोल्स और नई अपॉर्चुनिटीज। तो चाहे आप ऑफिस की तरफ निकल चुके हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हो, या अपनी दिन की शुरुआत जो है इस मौसम के लिए एक गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ आप कर रहे हो, तो मैं अगले कुछ घंटे जो है आपके साथ निभाने वाली हूँ विद सम ग्रेट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस, ग्रेट म्यूजिक और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। तो मेरे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन FM Rainbow 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ रवली।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आज रफली ऑन एफ रेनबो 101.9। वेल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैवल ट्रेंड की जो सिर्फ सूटकेसेस और टिकट्स के बारे में ही नहीं बल्कि दिल की यादों के बारे में भी है। जी हाँ, मतलब 2026 का एक सबसे बड़ा ट्रैवल ट्रेंड आया है, वो है नॉस्टैल्जिया ट्रैवल, यानी ऐसी जर्नीज जहाँ लोग नए डेस्टिनेशंस डिस्कवर करने के बजाय उन जगहों पर वापस जा रहे हैं जहाँ उनकी पुरानी यादें बसी हुई हैं। कभी सोचा है हम ट्रैवल क्यों करते हैं? नई जगह देखने के लिए या नए लोगों से मिलने के लिए या फिर थोड़ा ब्रेक लेने के लिए? बिल्कुल, है ना। लेकिन आजकल लोग एक और रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं, वो है अपनी खुशियों को दोबारा फील करने के लिए। तो हम इस नॉस्टैल्जिया ट्रैवल के बारे में और बात करेंगे, बट इस गीत के बाद तो बने रहिएगा ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9 पर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ट्रैवल ट्रेंड के बारे में जो ना सबसे ज़्यादा या एक वन ऑफ द ट्रैवल ट्रेंड्स में उभर के आया है साल 2026 में, और वो है नुस्ट

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉस्टैल्जिया ट्रैवल या मेमोरी ट्रैवल के बारे में। तो आजकल के ज़माने में लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि वेयर शुड आई गो नेक्स्ट, बल्कि वो पूछ रहे हैं कि कहाँ मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी या वेयर वुड बी दी आई बी दी हैप्पीएस्ट। मतलब क्या ट्रांजिशन है ना, पहले हम डेस्टिनेशन चूज़ करते थे, अब लोग फीलिंग चूज़ कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में बहुत सारे ट्रैवलर्स अपने चाइल्डहुड डेस्टिनेशंस को दोबारा विजिट कर रहे हैं, एस्पेशली जब वो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वही खुशियाँ फील करें जो उन्होंने बचपन में फील की थी। यू नो, वो सेम गेस्ट हाउस, सेम बीच, सेम स्ट्रीट फूड स्टॉल, लेकिन इस बार एक नई जनरेशन के साथ। और ऑनेस्टली ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, हम सिर्फ मेमोरीज़ को याद नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें शेयर भी कर रहे हैं। और नॉस्टैल्जिया ट्रैवल का सबसे पहला पिलर है पर्सनल रीएनैक्टमेंट, यानी अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को दोबारा जीना, जैसे हर साल एक ही हिल स्टेशन जाना, चाइल्डहुड फोटोज़ को रिक्रिएट करना, या फिर उसी रेस्टोरेंट में खाना जहां आप बचपन में फैमिली के साथ जाते थे। मतलब डेस्टिनेशन शायद वही हो, लेकिन एक्सपीरियंस हर बार नया हो जाता है, क्योंकि अब आप उसे अपने लव्ड वंस के साथ दोबारा जी रहे हैं।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजी रबली। वेल, हम बात कर रहे हैं नॉस्टैल्जिया ट्रैवल के बारे में और इस गीत से पहले हमने बात किया था इस ट्रैवल के सबसे पहले पिलर के बारे में जो है पर्सनल रीएनैक्टमेंट, यानी कि आप इन जगहों पे एक बार फिर जाते हो, वही जगह लेकिन एक्सपीरियंसेस नया, क्योंकि आप अब भी अपने लव्ड वंस के साथ जा रहे हो या आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे दोबारा विजिट कर रहे हो। तो दूसरा पिलर आता है एंसेस्ट्री एंड हेरिटेज और हेरिटेज। आजकल बहुत लोग अपने एंसेस्ट्रल विलेजेस या हेरिटेज होम्स और फैमिली रूट्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और ये ट्रिप्स जो है साइट सीइंग से ज़्यादा पर्सनल कनेक्शन के बारे में होती है। तो लोग अपने दादा दादी हो या नाना नानी के कहानियों को समझना चाहते हैं, उन जगहों को देखना चाहते हैं जहाँ से उनकी फैमिली की जर्नी शुरू हुई थी। और वही तीसरी पिलर है पॉप कल्चर और रेट्रो एरास, मतलब मिलेनियल्स और जनरेशन जी के लिए नॉस्टैल्जिया का मतलब सिर्फ बचपन नहीं, कभी कभी वो उन डिकेड्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उन्होंने सिर्फ मूवीज, टीवी शोज या फैमिली स्टोरीज में देखा हो, यानी कि वो विंटेज ट्रेन जर्नीज, वो रेट्रो गेमिंग आर्केड्स या वो 90s से इंस्पायर्ड कैफेज और ओल्ड स्कूल होटल्स। ये सब इसीलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि लोग थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से बाहर आकर एक सिंपलर टाइम फील करना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए भी एक रीज़न हो सकता है कि नॉस्टैल्जिया ट्रैवल इज़ ऑन अ रोर नाउडेज। सो अगर आप भी इस शिफ्ट के साथ जाना चाहते हो तो आप इस जाना जगह प्लान करना चाहोगे वो आप पर ही निर्भर है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन FM Rainbow 101.9।

Well, बात हो रही है नॉस्टैल्जिया ट्रैवल के बारे में, तो जैसे हमने बात किया है कुछ इस ट्रैवल के पिलर्स से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में, तो पहला जैसे था वो पर्सनल रीएनैक्टमेंट हो गया, और उसकी बात थी एंसेस्ट्री और हेरिटेज की, और तीसरा रहा पॉप कल्चर और रिट्रो एरास की। तो सोशल मीडिया ने भी जो है इस ट्रेंड को काफ़ी बूस्ट किया है, मतलब वहाँ पर रिट्रो फिल्म कैमरास हो या VHS स्टाइल एडिट्स और विंटेज एस्थेटिक का क्रेज़ जो है बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ ट्रैवल बुक करने के लिए करते हैं, और फिर डेस्टिनेशन पर पहुंच के स्क्रीन फ्री एक्सपीरियंसेस ढूंढते हैं। क्या पैराडॉक्स है ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया हमें इमोशनल कंफर्ट देता है, जब हम किसी फेमिलियर और हैप्पी प्लेस पर वापस जाते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, जैसे लाइफ कितनी भी फास्ट हो जाए कुछ जगह और कुछ यादें हमेशा हमारे लिए सेफ स्पेस बनी रहती है। मतलब सोचिए कश्मीर या केरला में फैमिली रियूनियन, स्विट्ज़रलैंड या सिंगापुर में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, या फ्रेंड्स के साथ वही ओल्ड रोड ट्रिप रूट दोबारा कवर करना, ये सब वेकेशंस नहीं होते, राइट? ये लाइफ के कुछ स्पेशल चैप्टर्स को भी मतलब खोलने जैसा होता है दोबारा, क्योंकि आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में शायद हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा याद करना और थोड़ा सा उन पलों

दोबारा जीना जो हमें असली खुशी देते हैं। तो अगर आपकी भी ट्रैवल आप अगर कभी प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद अ डाउनलाइन मेमोरी ट्रिप अहेड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉस्टैल्जिया ट्रैवल के बारे में। वेल स्टीरियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:47:42। तो नॉस्टैल्जिया ट्रैवल जो है हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे मीनिंगफुल जर्नी वो नहीं होती जो हमें किसी नई जगह ले जाए, कभी कभी सबसे मीनिंगफुल जर्नी वो होती है जो हमें वापस ले जाए उन लोगों के पास, उन जगहों के पास और उन पलों के पास जिन्होंने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं एक्चुअल में। तो अगर आप को अपनी किसी ऐसी पुरानी यादों से जुड़ने जगह फिर से विज़िट करने का चांस मिला तो वो क्या होगी, आप एक बार सोच लीजिए। क्योंकि अगर आप शायद आपको वक्त मिला सो यू कैन ऑल्सो गो ऑन विद दिस नॉस्टैल्जिक ट्रैवल जो इस साल जो है काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। वो आपका स्कूल का टाउन हो सकता है या आपकी ग्रैंड

पेरेंट्स का घर हो सकता है, या कोई बीच एरिया, या फिर कोई हिल स्टेशन जहाँ आपने अपना बचपन बिताया हो, या आपकी गोल्डन मोमेंट्स वहाँ पे आपको मिला है। तो सोचिए जरा, क्योंकि कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो और इसी नॉस्टैल्जिक मूड को और भी स्पेशल बनाते हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: FM Rainbow 101.9
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजी रफली। वेल, आज है बर्थडे कृति सैनन का, जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं। तो अगर आपने उनकी काम को नोटिस किया हो तो उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है कि उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में कैसी बनाई है विद अ लॉट ऑफ नो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। और एक्टर बनने से पहले कृति सैनन एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रही है, तो वहाँ से एक एक्ट्रेस बनना वो एक करियर स्विच रहा है उनके लिए। और उन्होंने बॉलीवुड के अलावा तेलुगु में भी एक फिल्म की है, वन ने निकोडु, महेश बाबू के साथ उनकी वो पहली तेलुगु मूवी रही है। उसके बाद उन्होंने दो चार फिल्में भी की है और अपनी बॉलीवुड की जर्नी उन्होंने शुरू की थी फिल्म हीरोपंती से। और फिर नो उसके बाद जो मूवीज़ आई, बरेली की बर्फी हो, लुका छुपी, मिमी, क्रो और कई मेमोरेबल फिल्म्स में उन्होंने अपनी वर्सिटैलिटी जो है दिखाई है। और अगर आपने मिमी देखी है तो आप अग्री करेंगे कि कृति ने उस फिल्म में बहुत ही एक अच्छा पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी, जिनके लिए उन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिला है। तो दैट रोल रियली शोड अप अ

completely different side of her as an actor. और वैसे भी कहते हैं कि बर्थडेज जो है सिर्फ केक और विशेस के लिए ही नहीं होते हैं, ये हमें रिमाइंड करते हैं कि हमारी ग्रोथ को सेलिब्रेट करें, कि हम अप्रिशिएट करें खुद को कि हाउ फार वी हैव कम एंड मे बी इवन इंस्पायर आर सेल्व्स टू कीप चेजिंग आवर ओन ड्रीम्स. सो विशिंग एक्टर कृति सेनन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. तो चलिए आइए सुनते हैं ये एक प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मिमी. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। वेल दोस्तों, हम जो है आज का टॉपिक जो है थोड़ा बहुत फनी भी है और थोड़ा रिलेटेबल भी है और डेफिनेटली शायद आपको थोड़ा हंसा भी दे सकता है, क्योंकि अब जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कि वॉट इफ़ आर फोन कुड टॉक फॉर वन डे। मतलब सोचिए कि अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं और अचानक वो बोल पड़ता है कि गुड मॉर्निंग और आज फिर से 10 बार स्नूज मत करना प्लीज़, और बस वहीं से ही हमारा दिन जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट? हमने कितनी बार ये किया होगा कि हमने अलार्म लगाया हो और फिर हमने उसे स्नूज कितनी बार किया है। आई थिंक ये हम सभी करते ही हैं, राइट? अगर यही बात हमें अपने फ़ोन के द्वारा ही ये जवाब मिल जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा ये एक इंटरेस्टिंग टेक अगर हम बात करेंगे इस विषय पे कि अगर हमारा फ़ोन दिन एक दिन के लिए अगर बात करे तो क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम गाने पे चले जाए, एक छोटा सा कमर्शियल स्पॉट और फिर वापस मिलते हैं सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9।
1: కాస్త వినండి మీ ముఖ్య

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विद मी आरजे रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं या यूँ कह लीजिए एक इंटरेस्टिंग टेक ले रहे हैं, अगर हमारा फ़ोन हमसे बात करे एक दिन के लिए, राइट? अगर सच बताए तो हम अपने फ़ोन के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, है ना? कभी मैसेजेस हो जाए या कभी कॉल्स, कभी फ़ोटोज़, कभी शॉपिंग, और कभी बस बिना रीज़न के स्क्रीन स्क्रॉल करते ही रहते हैं। और अगर फ़ोन बोल सकता तो उसके पास हमारे बारे में कितनी स्टोरीज होती, है ना? और मुझे लगता है हमारा फ़ोन सबसे पहले कंप्लेन करता कि यार कितनी फ़ोटोज़ लेते हो, और वही पोज़ में इतने सारे फ़ोटोज़ लेते हो और फिर सिर्फ एक ही चूज़ करते हो, और बाकी वो जो फ़ोटोज़ लिए हैं उसका क्या कसूर है? और फिर वही और गैलरी के स्क्रीनशॉट का राज खुलता है। मतलब एक एक जगह पे एक रेसिपी का स्क्रीनशॉट कब बनाने वाली हो, मतलब ये मोटिवेशनल कोट हमने सेव किया होता है, और फिर फ़ोन अचानक अगर बोल पड़ा कि अगर ये मोटिवेशन जो कोट हमने सेव किया है उसे कब फॉलो करेंगे, और ये शॉपिंग कार्ट में जो हमने इतने सारे आइटम्स डाल रखे हैं उनका क्या प्लान है, मतलब शायद हमने जो शायद करके रख भी दिए होंगे फ़ोन, शायद हमें वो भी याद दिला दी कि वहाँ पे इतने सारे फ़ोटोज़ क्यों हैं, इतने सारे आइटम्स हमारे कार्ट में क्यों पड़े हुए हैं, मतलब इनका करना क्या है एक्चुअल में, राइट? तो बात करेंगे इसके बारे में, स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: इस गाने से पहले हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमारा फ़ोन हमसे एक दिन के लिए बात करे तो क्या क्या कहानियाँ शायद हमारे बारे में बोले, राइट? क्योंकि फ़ोन हमसे ज़्यादा हमारी हैबिट्स को जानता है, उसे पता होता है कि हम किस टाइम उठते हैं, किससे ज़्यादा बात करते हैं, कौन से ऐप हम बार बार ओपन करते हैं और कब बिना वजह फ़ोन अनलॉक करके फिर लॉक कर देते हैं। अगर फ़ोन एक दिन के लिए बोलने लगा तो शायद वो हमारे फ्रेंड्स को भी एक्सपोज कर सकता है ना। ये जो मैसेज आया था, आई एम ऑन माई वे, एक्चुअली वो घर से निकलते भी नहीं है, बट ये हम मैसेज उन्हें दे देते हैं, राइट? और ग्रुप चैट्स, मतलब फ़ोन तो पूरा कम्प्यूटर बन जाता है। इस ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन एक्चुअली उस ग्रुप में कितनी ऐसी यूज़फुल बातें हमने की होगी। लेकिन एक इमोशनल साइड भी है। फ़ोन सिर्फ सीक्रेट का बॉक्स नहीं होता, इसमें हमारे मेमोरीज़ भी होती हैं, फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, बर्थडे वीडियोस होती है, या वॉइस नोट्स, या कुछ ओल्ड मैसेजेस, और वो रैंडम कैंडिड फ़ोटोज़ जो देख कर हम अक्सर स्माइल करते हैं। क्योंकि कुछ ये ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद हम एक्ट नहीं कर सकते, बट वो अपने आप में उस पल में जब क्लिक करते हैं तो वो एक अलग अंदाज हो जाता है।

और कभी-कभी पुराने चैट्स जब हम स्क्रॉल करते हैं तो जैसे फ़ोन हमें हमारी ओन स्टोरी ही सुना रही होती है, याद है ये ट्रिप कितना फ़न था या और ये इतना बर्थडे सरप्राइज़ कैसा था वगैरह वगैरह, राइट। और कभी-कभार तो शायद अगर फ़ोन बोल सकता तो वो हमारी कंप्लेंट भी नहीं करता, वो हमें शायद याद दिलाता कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल मेमोरी से भरी हुई है, और हो सकता है दिन के एंड में वो प्यार से बोले, थोड़ा कम स्क्रीन टाइम रखो, थोड़ा ज़्यादा रियल लाइफ एंजॉय करो, मैं यहीं हूँ लेकिन तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मतलब क्या बात है ना, एक टॉकिंग फ़ोन हमेशा हंसता भी है, एम्बेरस भी करता है और शायद थोड़ा इमोशनल भी बना देता है, राइट। सोचिए ज़रूर, और हमें अपने आंसर्स आप मैसेज करके भी भेज सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन बोल पड़ा तो आप क्या बोल सकता है आपके बारे में। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:55। अब से कुछ ही समय में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश, और उसके बाद 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे। नमस्ते, हेलो, आदाब के साथ स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

0: बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chanambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the Rajya Sabha, the scene was no different. When the House assembled to begin its proceedings at 11 a.m, Union Ministers laid papers on the table. Amid the uproar by the opposition members, the House was adjourned till 12 noon. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jaimala Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of those police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। आइए सुनते हैं अगला गाना फ्रॉम द मूवी हमसे है मुकाबला। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेल स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:42:45, यानी कि मतलब अब एक बजने में वक्त थोड़ा बाकी है और फिर हेलो रेनबो आपका स्वागत करेगा एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक क्या है उसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। वेल, वक्त हो गया है इशारा का कि अब हेलो रेनबो आगाज हो चुका है। तो आज के इस हमारे फोन इन सेगमेंट में बात होने वाली है आपकी इमेजिनेशन की। मतलब थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में चलते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए अगर आपको 1 महीने की वेकेशन मिल जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ना कोई ऑफिस की टेंशन है, ना ही कॉलेज की कोई असाइनमेंट्स, ना ही डेडलाइंस, और ना बजट की फिक्र। बस एक पूरा महीना सिर्फ ट्रैवल, रिलैक्सेशन और नए एक्सपीरियंसेस। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको 1 मंथ का फ्री वेकेशन मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं ऑन 0402323 0030 या 0402323481 या 0402970471 पर। तो आप कॉल करिए और मेरे साथ आपकी इमेजिनेशन हम साझा कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।

हेलो रेनबो में आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवि. वेल, आज का सवाल मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपको एक महीने की छुट्टी मिलती है वो भी फ्री, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि किसी के लिए कुछ माउंटेन्स जाना पसंद करते हैं, तो किसी को वहीं बीचेस वाली जगह काफ़ी पसंद आती है, तो राइट, किसी को और ले लद्दाख की वो एडवेंचरस रोड्स जहाँ पे वो जाना पसंद करते हो, या फिर दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं जो अपनी खूबसूरत लैंडस्केप्स के लिए जानी जाती है, जिनमें से एक है स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड या बाली, जो बहुत सारे लोगों के ऐसा एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप इस जगहों पर जाओगे तो वाई दैट प्लेस, वो जगह ही क्यों आपने चुना है, तो वो भी आप मेरे साथ जो है शेयर कर सकते हैं. तो कॉल कर सकते हैं ऑन नंबर 0402323 0030 या 2323 4821 पर.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजी ट्रैवली। वैसे ना ट्रैवल सिर्फ फ़ोटोज़ कलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ट्रैवल मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए भी होता है। किसी के लिए परफेक्ट वेकेशन मतलब सनराइज़ इन द माउंटेन्स हो सकता है, और वहीं किसी के लिए बीच पर सनसेट, और किसी के लिए लोकल फूड एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है, तो वहीं दूसरी ओर किसी और को एक पीसफुल सा प्लेस जहाँ फ़ोन नेटवर्क भी ना आए। एंड ऑनेस्टली कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे फैमिली के साथ या हमारे फ्रेंड्स के साथ, या आप एक सोलो जर्नी पे निकल पड़े हो। बट हर ट्रिप हमें कुछ न कुछ नया सिखा ही जाता है।

0: FM Rainbow 101.9
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली। बात करते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं। हेलो,
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम रवली जी, श्रीनिवासरा मलकपेट में।
1: गुड आफ्टरनून सर। तो बताइए सर, को मौका मिला ऐसा फ्री वेकेशन अगर आपको मिल जाता है?

0: आपको मौका मिला ऐसा फ्री वेकेशन अगर आपको मिल जाता है?
1: आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं अपने कंट्री में जो है सो 12 ज्योतिर्लिंग है, बाकी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें क्या है मैं 9 देख चुका हूँ।
0: अच्छा जी।
1: और 3 बाकी है।
0: ओके।
1: तो वो 3 क्या है, एक तो कैसा भी अपने को नजदीक में है, औरंगाबाद का एक है, लास्ट में देखना बोल के बोलते हैं, तो वो देख ले सकते हैं।
0: अच्छा जी।
1: तो बाकी जो भी है अपने को नजदीक में छे, तो वो 2 को जो है सो अमरनाथ वगैरह जाने का है, और एक नेपाल में है बोल के बोलते हैं, तो वो मैं उसको देखना
0: देखना
1: चाहूँ।
0: चाहोगे जी?
1: या एक कहीं कोई एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है
0: जी।
1: तो अपने
0: अच्छा।
1: को कभी भी ये नहीं रहता, वो साथ साथ कैसा भी ये बीच में अपने को नया अपने को राम मंदिर भी आया सो है, काशी भी अच्छा बना है बोलते। अब काशी तो इसके पहले देख लीजिए, अयोध्या भी गए थे हम लोग,
0: राइट
1: पर
0: राइट
1: क्या है अच्छा बनने के बाद गए नहीं,
0: जी। तो
1: तो
0: आप ये कंप्लीट
1: नेक्स्ट
0: करना चाहोगे, उम्मीद है आप कंप्लीट करें आपने ये यात्रा।
1: वो
0: सो
1: तो
0: थैंक यू
1: पूरे
0: सर।
1: कंप्लीट कर लिए तो
0: राइट
1: एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है बोल के मैं
0: राइट।
1: सोच रहा हूँ मैडम,
0: थैंक यू सर।
1: अगर वो चांस मिले तो बहुत ही अच्छा है हम सोचते हैं।
0: राइट सर।
1: थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू।
1: मैम।
0: हेलो हेलो हेलो।
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी।
0: गुड आफ्टरनून सर, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। नहीं सर, आपकी डिस्टरबेंस आ रही है आपकी और से। नहीं सर। राइट। वेल, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फिर से दोबारा। पर आज का मैं सवाल था कि अगर 1 मंथ वेकेशन आपको मिल जाता है, वो भी फ्री, जहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं है कि कहीं काम का कोई डेडलाइन ना हो या मीटिंग्स ना हो, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है, रिलैक्स करना है और नए एक्सपीरियंसेस को अनुभव करना है, राइट? इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और समवेयर इन आर कंट्री एज वेल। तो आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9. स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:55, यानी कि वक्त का इशारा हो गया है कि आपका मेरे साथ सफर यहीं खत्म होता है. तो आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले शो में. तब तक के लिए सुनते रहिए FM Rainbow 101.9. मैं हूँ RJ रावली.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। जी दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आज नैरंग में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत होगी हर्फ ताबिंदा से, तहरीर पेशकश होगी फहमीदा फहमोश ताहबा की, उसके बाद आप सुनेंगे बिसात गज़ल में मारूफ शायर मोहतरम रहमान जामी के कलाम को, और उसके बाद गीत सुरीले गाते जा में खूबसूरत और दिलकश नगमे पेश किए जाएंगे, और प्याम शब के साथ नैरंग इख्तिताम पज़ीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश है मोहतरमा फहमीदा फहमोश साहबा की, लीजिए समाप्त कीजिए।
1: सच के रास्ते पे चलने का ये फायदा हुआ, सच के रास्ते पे चलने का ये फायदा हुआ कि रास्ते में कहीं भीड़ न थी। जी हाँ, सच्चाई इंसानी किरदार का सबसे अहम और बुनियादी वस्फ है। सच बोलने का मतलब है कि हकायक को जों का तों पेश किया जाए, ना कि उन्हें तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाए। सच्चाई का ताल्लुक इंसानी ज़मीर और अखलाकियात से है। ये वो खूबी है जो इंसान को माशरे में इज्जत और एतमाद बख्शती है। उर्दू ज़बान में कहावत है, सच को आंच नहीं। जब इंसान सच बोलता है तो दूसरे उस पर एतमाद करते हैं। अगर सच्चाई ना हो तो माशरे में शक, शबहात और नफ़रतें जन्म लेती हैं। सच बोलने वाला इंसान नफ्सियाती तौर पर पुरसुकून होता है। उसे किसी झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ नहीं बोलना पड़ता। सच्चाई इंसान के किरदार को पाकीज़ा बनाती है। जो लोग सच्चाई को अपना शुआर बनाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इज्जत और नेक नामी कमाते हैं। अगरचे सच बाज़ औक़ात कड़वा होता है और वक्ती तौर पर मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में सच्चाई ही इंसान को निजात दिलाती है। एक मुस्तहकम माशरे के लिए सच्चाई ज़रूरी है। झूठ माशरे को खोखला कर देता है। तारीख में सच्चाई की बेशुमार मिसालें मौजूद है जिन्होंने सच पर कायम रहने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजार दी, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। सच्चाई एक ऐसा जेवर है जो इंसान की शख्सियत को चार चांद लगा देता है। ये सच है कि सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। एक सच्चा इंसान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि माशरे के लिए भी एक बेहतरीन असासा होता है। हमें चाहिए कि हर हाल में सच का साथ दे, क्योंकि इसी में कामयाबी है। झूठा इंसान हमेशा इस खौफ में रहता है कहीं इसकी पोल ना खुल जाए, जबकि सच्चा इंसान ज़हनी तौर पर आज़ाद और बहादुर होता है। उसे अपने अल्फाज को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हकीकत कभी नहीं बदलती। सच्चाई का रास्ता शुरू में कठिन सा लगता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा इज्जत और इत्मीनान की सूरत में निकलता है। एक सच्चा इंसान अपनी ज़ात में एक अंजुमन होता है जिसकी रोशनी से पूरा माशरा फैज़याब होता है। सच ना बोलने वाले लोगों से निमटने के लिए हमको उनसे बराहे रास्त सवालात के बजाय तफसीलात मांगनी चाहिए। जब आपको शक हो कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसे फौरन झूठा कहने के बजाय उससे सवाल

0: हालात पूछे, झूठ बोलने वाला आपसे नजर मिलाने से कतराता है। जी हाँ, ये हकीकत है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो नजर मिलाने से कतराते हैं। इसके साथ साथ बात करते हुए उनके लहजे में उतार चढ़ाव या हिचकिचाहट आ सकती है। सच्चाई की अहमियत बताना चाहिए। अगर कोई शख्स मुसलसल झूठ बोलने का आदी हो तो उससे बहस करने के बजाय फासला रखना ही बेहतर है। आखिर में उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।
1: जी दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा, तहरीर पेशकश थी मोहतरमा फहमीदा फहमोज साहबा का। जी दोस्तों, ज़िंदगी में सच्चाई बहुत ज़रूरी है और सच्चाई पर चलना ही कामयाबी का रास्ता दिखाता है। हफीज़ मेरठी ने क्या खूब कहा है, रात को रात कह दिया मैंने, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। जी दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब पेश है बिसाते गज़ल, जिसमें आप सुनेंगे मोहतरम शायर रहमान जामी साहब के कलाम को। रहमान जामी साहब इसमें अपना कलाम पेश करेंगे। मैं इस मौके पर, मुझे ये चार लाइन भी याद आ रहे हैं। यूं ही कभी किसी को गुनहगार मत कहो, यूं ही कभी किसी को गुनहगार मत कहो, मैं सच अगर कहूँ तो तरफदार मत कहो, मुमकिन है भूख से ही कदम लड़खड़ाए हों, मुमकिन है भूख से ही कदम लड़खड़ाए हों, हर लड़खड़ाने वाले को मैं खार मत कहो। तो पेश है बिसाते गज़ल, रहमान जामी साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं, समाप्त कीजिए।
2: इस नशिस्त में ऑल इंडिया रेडियो के जरिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मतलब अर्ज किया है, अब के फिर से तेरी ताईद नजर आती है, अब के फिर से तेरी ताईद नजर आती है, जिंदगी की मुझे उम्मीद नजर आती है, अब के फिर से तेरी ताईद नजर आती है, जिंदगी की मुझे उम्मीद नजर आती है। शेर है, डर के दुनिया से नहीं करते थे अब करने की, दिल की जानिब से ही ताकीद नजर आती है, डर के दुनिया से नहीं करते थे अब करने की, दिल की जानिब से ही ताकीद नजर आती है। और शेर है, तुझसे मिलने की तुझे देखते रहने की लगन, तुझसे मिलने की तुझे देखते रहने की लगन, मुझको अक्सर सये दीद नजर आती है, तुझसे मिलने की तुझे देखते रहने की लगन, मुझको अक्सर सये दीद नजर आती है। मैंने पूछा था कि क्या तूने भी चाहा है मुझे, मैंने पूछा था कि क्या तूने भी चाहा है मुझे, तेरी खामोशी में तरदीद नजर आती है, तेरी खामोशी में तरदीद नजर आती है, मैंने पूछा था कि क्या तूने भी चाहा है मुझे, तेरी खामोशी में तरदीद नजर आती है, बात तो सच्ची है उसकी मगर इस लिस्ट का क्या, बात तो सच्ची है उसकी मगर इस लिस्ट का क्या, जिसमें हर झूठ की तखलीद नजर आती है, जिसमें हर झूठ की तखलीद नजर आती है, बात तो सच्ची है उसकी मगर इस लिस्ट का क्या। लिस्ट अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने बेसाख्ता। बात तो सच्ची है उसकी मगर इस लिस्ट का क्या, जिसमें हर झूठ की तखलीद नजर आती है, इतना कुछ कहना है बाकी मेरे अहबाब से अब, इतना कुछ कहना है बाकी मेरे अहबाब से अब, सारी तफसील भी तमहीद नजर आती है, इतना कुछ कहना है बाकी मेरे अहबाब से अब, सारी तफसील भी तमहीद नजर आती है। मखता है, बीवी बच्चे हैं मेरे जिसमें बहुत खुश जामी, बीवी बच्चे हैं मेरे जिसमें बहुत खुश जामी, ऐसी तकरीब मुझे ईद नजर आती है, बीवी बच्चे हैं मेरे जिसमें बहुत खुश जामी, ऐसी तकरीब मुझे ईद नजर आती है। दूसरी गजल है, इसका मतलब है, जब आँख खुली इल्म हुआ

ख्वाब नहीं था। जब आंख खुली इल्म हुआ ख्वाब नहीं था, इन आंखों के आगे रुख महताब नहीं था। जब आंख खुली इल्म हुआ ख्वाब नहीं था, इन आंखों के आगे रुख महताब नहीं था। एक बार मिला आपसे मिलने को दोबारा, एक बार मिला आपसे मिलने को दोबारा, ये बात गलत है कि मैं बेताब नहीं था। एक बार मिला आपसे मिलने को दोबारा, ये बात गलत है कि मैं बेताब नहीं था। गर ख्वाब था ख्वाबों में ख्यालों में तुम्हारे, गर ख्वाब था ख्वाबों में ख्यालों में तुम्हारे, कैसे कहूँ मैं प्यार में गर ख्वाब नहीं था। बातों में तो मूसीकी ही रस घोल रही थी, बातों में तो मूसीकी ही रस घोल रही थी, ये बात अलग हाथ में मिजराब नहीं था। बातों में तो मूसीकी ही रस घोल रही थी, ये बात अलग हाथ में मिजराब नहीं था। मदहोश किए देती थी ये कैफियतें मैं, मदहोश किए देती थी ये कैफियतें मैं, महफिल में था पर हामिल आदाब नहीं था। और शेर है, क्या कीजिए क्या कीजिए बयां तलखिए अल्फाज जबां से, क्या कीजिए बयां तलखिए अल्फाज जबां से, होंठों पे कोई लुत्फ मैं नाब नहीं था। मख्तार किया है, मैं उसको मुखातब करूं किस नाम से जामी, मैं उसको मुखातब करूं किस नाम से जामी, अब उसके मुनासिब कोई अलकाब नहीं था। मैं उसको मुखातब करूं किस नाम से जामी, अब उसके मुनासिब कोई अलकाब नजर अलकाब नहीं था, अब उसके मुनासिब कोई अलकाब नहीं था। और ये कि गजल है, इसका मतला है, अर्ज किया, मैं खुश भी रहा खुद से कभी खुद से खफा भी, मैं खुश भी रहा खुद से कभी खुद से खफा भी, हसास था इस वास्ते मगमूम रहा भी, मैं खुश भी रहा खुद से कभी खुद से खफा भी, हसास था इस वास्ते महरूम रहा भी। हर शेर में हक बात का इजहार किया भी, हर शेर में हक बात का इजहार किया भी, घबराया ना हालात से हरगिज मैं जरा भी, हर शेर में हक बात का इजहार किया भी, घबराया ना हालात से हरगिज मैं जरा भी, मैं आम सा एक शख्स हूँ लेकिन यहाँ मेरे रहजन भी ताकुब में हैं और राहनुमा भी, मैं आम सा एक शख्स हूँ लेकिन यहाँ मेरे रहजन भी ताकुब में हैं और राहनुमा भी, रहजन भी ताकुब में हैं और राहनुमा भी। है मद्द मुखाबिल जो तवाना तो डरूं क्यों, है मद्द मुखाबिल जो तवाना तो डरूं क्यों, है साथ हमेशा ही मेरे मेरा खुदा भी, है मद्द मुखाबिल जो तवाना तो डरूं क्यों, है साथ हमेशा ही मेरे मेरा खुदा भी, है साथ हमेशा ही मेरे मेरा खुदा भी, जब चाहे मुझे आजमा ठहरूंगा मुसलमान, जब चाहे मुझे आजमा ठहरूंगा मुसलमान, काम आएगी आखिर को यहाँ मेरी वफा भी, जब चाहे मुझे आजमा ठहरूंगा मुसलमान, काम आएगी आखिर को यहाँ मेरी वफा भी, हूँ फिर भी गनी पास ये सरमाया ये दिल है, हूँ फिर भी गनी पास ये सरमाया ये दिल है, माना सरे बाजार कई बार लुटा भी, हूँ फिर भी गनी पास ये सरमाया दिल है, माना सरे बाजार कई बार लुटा भी, शायर हूँ तो पैगाम मोहब्बत ही है मेरा, शायर हूँ तो पैगाम मोहब्बत ही है मेरा, जामी बड़ा रखती है असर मेरी नवा भी, शायर हूँ तो पैगाम मोहब्बत ही है मेरा, जामी बड़ा रखती है असर मेरी नवा भी। और आखिरी गजल पेश कर रहा हूँ, मतला है, हर रात का खून सुबह की तनवीर बना है, हर रात का खून सुबह की तनवीर बना है, एहसास का दर्पण ही तो तकरीर बना है, हर रात का खून सुबह की तनवीर बना है, एहसास का दर्पण ही तो तकरीर बना है, थोड़ा सही घायल किया हर बार जिगर को, थोड़ा सही घायल किया हर बार जिगर को, हर तेरी नजर यूं ही कहा तीर बना है, हर तीर

0: तीरे नजर यूं ही कहां तीर बना है, थोड़ा सही घायल किया हर बार जिगर को, हर तीरे नजर यूं ही कहां तीर बना है, तदबीर से करता रहा हर फैसला दिल का। शेर के तदबीर से करता रहा हर फैसला दिल का, रहबर मेरा अब साहिब तकदीर बना है, तदबीर से करता रहा हर फैसला दिल का, रहबर मेरा अब साहिब तकदीर बना है, हर ख्वाब को आंखों में ही दोहराया कुछ इतना, हर ख्वाब को आंखों में ही दोहराया कुछ इतना, हर ख्वाब मेरा आप ही ताबीर बना है, हर ख्वाब मेरा आप ही ताबीर बना है, जो लफ्ज़ तेरे खत में लिखा सोच के मैंने, जो लफ्ज़ तेरे खत में लिखा सोच के मैंने, वो लफ्ज़ सरापा मेरी तस्वीर बना है, जो लफ्ज़ तेरे खत में लिखा सोच के मैंने, वो लफ्ज़ सरापा मेरी तस्वीर बना है, जिसने भी पढ़ा उसने बयां अपना ही समझा, जिसने भी पढ़ा उसने बयां अपना ही समझा, हर शेर मेरा जज्बे की तफसीर बना है, जिसने भी पढ़ा उसने बयां अपना ही समझा, हर शेर मेरा जज्बे की तफसीर बना है, जिसने भी पढ़ा उसने बयां अपना ही समझा, हर शेर मेरा जज्बे की तफसीर बना है। मख्ता अर्ज किया, जामी को कहां मंजिल मकसूद की परवाह, जामी को कहां मंजिल मकसूद की परवाह, लुटवा दिया खुद कारवा खुद मीर बना है, जामी को कहां मंजिल मकसूद की परवाह, लुटवा दिया खुद कारवा खुद मीर बना है, हर रात का खून सुबह की तनवीर बना है, एहसास का दर्पण ही तो तखरीर बना है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जनाब रहमान जामी साहब को, जो बिसात गज़ल में अपना कलाम पेश कर रहे थे। दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और इस सिलसिले में, इस कड़ी में अब बारी है प्रोग्राम गीत सुरीले गाती जाकी। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में दिलकश नगमों से लुत्फानंदोज़ तो हम होंगे ही, साथ में हैदराबाद में ट्रैफिक के बारे में भी बातचीत करेंगे। कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है, और अगर ये सफ़र हैदराबाद की सड़कों पर हो तो भाई साहब, ज़िंदगी के साथ साथ सब्र, बर्दाश्त, ब्रेक, क्लच और हॉर्न सब का इम्तहान एक साथ हो जाता है। सुबह घर से निकलते वक्त आदमी बड़े एतमाद से कहता है, बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और हैदराबाद की ट्रैफिक दूर कहीं खड़ी मुस्कुराकर कहती है, आजा बेटा पहले मुझसे तो मिल ले, और अगर आपने किसी से कह दिया कि मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने सिर्फ हैदराबाद की ट्रैफिक से मशवरा किए बगैर वादा कर लिया। तो हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में हमारी दिलचस्प गुफ्तगु जारी रहेगी, और फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत
0: इस नशिस्त में।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में, खूबसूरत और दिलकश नगमे, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे हैदराबाद में ट्रैफिक की, तो आज ज़रा बात करते हैं अपने प्यारे शहर हैदराबाद की सड़कों की। वो सड़कें जहां गाड़ियां चलती कम हैं, एक दूसरे को समझती ज़्यादा हैं। एक तरफ कार वाला सोच रहा है ये बाइक वाला कहाँ से आ गया, बाइक वाला सोच रहा है कार वाला इतनी जगह लेकर क्यों चल रहा है, ऑटो वाला दोनों को देखकर सोच रहा है आप दोनों नए लगते हैं, असल रास्ता तो मुझे मालूम है, और पीछे से हॉर्न बजाने वाला शायद ये समझता है कि हॉर्न में कोई ऐसी खुफिया ताकत है कि आगे की 50 गाड़ियाँ अचानक हवा में उड़ जाएंगी और उसके बाद रास्ता बन जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है, भाई सिग्नल लाल है, आगे वाला भी इंसान है, जादूगर नहीं, आप जितना मर्जी हॉर्न बजा लें वो गाड़ी को उड़ाकर सिग्नल की दूसरी तरफ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मकाम पे जहां एक और खूबसूरत नगमा आपको सुनाना चाहते हैं, तो लीजिए समाप्त कीजिए ये खूबसूरत गीत।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और दिलकश फिल्मी नगमे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। दोस्तों, हम नगमों के बीच बीच में बात कर रहे हैं हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में भी। वैसे हैदराबाद के ट्रैफिक में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, यहाँ कभी भी मामूली सी टक्कर हो जाए तो मंज़र भी वो कमाल का होता है। कोई लड़ाई झगड़े या मारपीट की नौबत नहीं आती। होता यूँ है कि एक साहब गाड़ी से उतरते हैं, दूसरे साहब भी उतरते हैं, दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी देखी, फिर एक दूसरे को देखा, एक ने कहा, क्या मियाँ घर से गाड़ी लेके निकले थे या निशाना लगाने? दूसरा मुस्करा कर बोला, अरे मियाँ आप भी तो ऐसे ब्रेक मारे जैसे सामने बिरयानी की आखिरी प्लेट बची थी। पहले साहब हंसे, दूसरे साहब हंसे, गाड़ी देखी और बोले, चलो मियाँ खैर है, आइंदा देख के, और दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। ये जो मामूली बात को बड़ा झगड़ा ना बनाने का मिजाज है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है। सड़क पर एक सेकंड की गलती हो सकती है, लेकिन इस एक सेकंड की गलती को आधे घंटे के झगड़े में बदल देना ज़रूरी तो नहीं है। बकौल शायर, सफ़र में नर्म लहजा भी बड़ा सामान होता है। सफ़र में नर्म लहजा भी बड़ा सामान होता है, ज़रा सा सब्र रख लीजिए, सफ़र आसान होता है।
1: चंचल।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और दिलकश नगमे। दोस्तों, नगमों के बीच में हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में भी। दोस्तों, हैदराबाद के ट्रैफिक में आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल कम ही देखने को मिलेगा और ये मुशाहदा आपने भी किया ही होगा। इसीलिए कभी कोई गुस्से में पूछ बैठता है, क्या मियाँ इंडिकेटर कंपनी वालों ने शो पीस के लिए दिया था क्या? सामने वाला भी अगर हैदराबादी मिजाज का हो तो कहेगा, अरे मियाँ भूल गया, अब पूरी ज़िंदगी इसी बात पर केस चलाओगे क्या? और बात ख़त्म। लेकिन सामीन, मजाक अपनी जगह, इंडिकेटर वाकई बहुत अहम चीज़ है, लेकिन हम में से बाज़ लोग गाड़ी पहले मोड़ लेते हैं, इंडिकेटर बाद में देते हैं, और बाज़ तो ऐसे भी होते हैं जो इंडिकेटर लेफ़्ट का देते हैं और राइट में टर्न कर लेते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर ऑन करके

भूल जाते हैं, इंडिकेटर ऑन कर दिया लेकिन वो साहब भूल गए, और इंडिकेटर को ऑन करने के भूलने के बाद समझने की सारी जिम्मेदारी वो पीछे वाले पे छोड़ देते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल सुनते हैं ये दिलकश नगमा।

खूबसूरत दिलकश नगमे। दोस्तों, हम नगमों के बीच बीच में बात कर रहे हैं हैदराबाद की ट्रैफिक के बारे में और सड़कों पर होने वाली कुछ कैफियत के बारे में। दोस्तों, हमारे बाज़ बाइक सवार दोस्त, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जहां कार वाले को 2 फीट की जगह नज़र आती है, वहां बाइक वाले को पूरी कौमी शाहराह दिखाई देती है। कार वाला सोच रहा होता है, यहां से तो साइकिल भी नहीं निकल सकती, और बाइक वाला, ज़रा देखना उस्ताद, अभी बताता हूँ, और वो वाकई निकल भी जाता है। पीछे कार वाला सिर्फ आईने में देखता रह जाता है, ये इंसान था या वाईफाई का सिग्नल, इतनी बारीक जगह से कैसे गुजर गया। मगर दोस्तों, हर जगह से निकल जाना बहादुरी नहीं है, असल बहादुरी ये है कि आप महफूज घर पहुँचें। 2 मिनट बचाने के लिए ऐसा रिस्क क्यों लिया जाए जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, ख़ास तौर पर हेलमेट। मेरे बाइक चलाने वाले दोस्तों, हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं होता, बाज़ लोग दूर से पुलिस वाले को देखते ही हेलमेट पहन लेते हैं। पुलिस गई हेलमेट फिर हाथ में, भाई साहब पुलिस वाले ने आपका सर किराए पर नहीं लिया हुआ है, सर आपका है, हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। हेलमेट की तरह ही कार में सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि आगे चालान न हो जाए। कुछ लोग सीट बेल्ट ऐसे लगाते हैं जैसे गाड़ी से कह रहे हों, देखो ज़्यादा सीरियस मत होना, पुलिस तक ही हमारा रिश्ता है। नहीं जनाब, सीट बेल्ट हादसे के वक्त आपकी हिफाजत के लिए है। दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये दिलकश नगमा।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं दिलकश नगमे। दोस्तों, नगमों के बीच बीच में हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की ट्रैफिक की। दोस्तों, आपने मुशाहदा किया होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे एक ख़ास तरह की मखलूक पाई जाती है। सिग्नल लाल है मगर साहब की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि सिग्नल से बातचीत हो रही हो, देख भाई मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तू भी ज़रा जल्दी ग्रीन हो जा। और सबसे दिलचस्प लम्हा वो होता है जब दूसरी तरफ का सिग्नल बंद होने वाला हो, अपनी तरफ अभी सुर्खी हो मगर पीछे से हॉर्न शुरू हो जाते हैं, तो एक साहब को बोलना पड़ता है, अरे मियाँ सिग्नल ग्रीन होने दो। हॉर्न से सिग्नल शर्मिंदा होकर रंग नहीं बदलता। ट्रैफिक सिग्नल दरअसल हमसे सिर्फ चंद सेकंड सब्र मांगता है। और सच तो ये है कि सड़क पर सब्र सिर्फ इखलाक नहीं, हिफाजत का भी जामिन है। बकौल शायर, सफ़र के साथ सफ़र के नए मसाइल थे, सफ़र के साथ सफ़र के नए मसाइल थे, घरों का जिक्र तो रस्ते में छूट जाता है।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, इन नगमों के बीच हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में भी और सड़क पर पेश आने वाली कुछ वाक़यात और कैफियत के बारे में भी। दोस्तों, सफ़र के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से हमें गुरेज करना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन ने इंसान को दुनिया

से तो जोड़ दिया, लेकिन गाड़ी चलाते हुए यही मोबाइल इंसान का ध्यान सड़क से तोड़ देता है। एक हाथ स्टीयरिंग पर, एक हाथ मोबाइल पर, आँख कभी सड़क पर कभी स्क्रीन पर। भाईजान, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये खतरे को दावत देना है। मैसेज अगर 5 मिनट बाद पढ़ लिया तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी। कॉल ज़रूरी है तो गाड़ी महफूज जगह पर रोक लीजिए, और वैसे भी अगर कोई पूछे कहाँ हो तो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल उठाकर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि बस रास्ते में हूँ। भाई, रास्ते में हो तो रास्ता देखो, और पैदल चलने वालों से भी मेरी एक मोहब्बत भरी गुजारिश है, सड़क पार करते वक्त मोबाइल की स्क्रीन से नज़रें उठा लीजिए। रील्स कभी भी देखी जा सकती हैं, रील्स कहीं नहीं जा रही हैं, रील्स से ज़्यादा अजीब

जा सकती हैं, रील्स कहीं नहीं जा रही हैं, रील्स से ज़्यादा अजीज आपकी ज़िंदगी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल हमें रखना चाहिए, और ड्राइविंग के दौरान या सड़क पार करते हुए मोबाइल स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में। दोस्तों, मेरे आटे वाले भाइयों के बग़ैर हैदराबाद के ट्रैफिक का जिक्र कैसे मुकम्मल हो सकता है? हैदराबादी आटो ये महज एक गाड़ी नहीं है, ये एक जज्बा है। आप नक्शे में देखेंगे रास्ता सीधा है, ऑटो वाला कहेगा नहीं साहब इधर से शॉर्टकट है। आप सोचेंगे गूगल मैप से कुछ और बता रहा है, मगर ऑटो वाले भाई के चेहरे पर ऐसा एतमाद होगा कि एक लम्हे के लिए गूगल भी सोचे हो सकता है मुझे ही हैदराबाद ठीक से ना मालूम हो। लेकिन मजाक से अलग, सड़क हम सब की मुश्तरक जगह है, कार वाले की भी, बाइक वाले की भी, ऑटो वाले की भी और बस वाले की भी और साइकिल वाले की भी और इसके साथ ही पैदल चलने वालों की भी। इसलिए ट्रैफिक का सबसे खूबसूरत उसूल शायद यही है कि अपनी जगह लीजिए मगर दूसरे का हक मत छीनिए। लेन बदलनी है तो इंडिकेटर दें, रफ्तार काबू में रखें, सिग्नल की पाबंदी करें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बचें और सबसे बढ़कर गुस्से को ड्राइविंग सीट पर न बैठने दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हादसे से ज़्यादा ख़तरनाक वो गुस्सा होता है जो हादसे के बाद पैदा होता है या सामने आता है। आदमी अचानक गुस्से में आ जाता है तो इस तरह गुस्से को अपनी सीट पर न बैठने दें का मतलब साफ है कि गुस्से को काबू में रखें। और इसी सिलसिले में अमीर मिनाई का एक शेर मुझे याद आ रहा है, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। और अब बारी है बातों के बीच इस खूबसूरत नगमे की, लीजिए समाप्त कीजिए।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरेले का तेजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने फिल्म कभी कभी से नगमा सुना मुकेश की आवाज़ में। दोस्तों, हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में। जी दोस्तों, गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने मुसाफिरों और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें ज़रूर पैदा कर दी हैं। इसलिए जब भी घर से निकलें तो ट्रैफिक का अंदाज़ा करके या रूट्स का मुआयना करके निकलें तो आपका वक्त भी बचेगा, और अगर मुआयना अच्छी तरह से कर लें तो यह अंदाज़ा लगा लें कि आपको किस रूट से जाना चाहिए और किस रूट को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, हैदराबाद के लोगों की अच्छी बात यह है कि वो ट्रैफिक के दौरान हर छोटी बात को अना का मसला नहीं बनाते, और ये भी हमारे हैदराबाद की एक ख़ास पहचान है, क्योंकि अना और गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शिकस्त दे गया उसका गुरूर ही उसको, शिकस्त दे गया उसका गुरूर ही उसको।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाते गाते प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं दिलकश फिल्मी नगमे। जी दोस्तों, हम प्रोग्राम के बीच बात कर रहे थे हैदराबाद के ट्रैफिक के बारे में, और पूरा हमारी पूरी बातचीत का लुबलबाब यही था कि ट्रैफिक के दौरान अपना ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें कि आपकी ज़ात से या आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान न पहुंचे। जान है तो जहान है। और उसके अलावा हमने बात की कि अपने गुस्से को हमें काबू में रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तो हम प्रोग्राम की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी हवाले से सुनते हैं ये खूबसूरत का नगमा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम शब। तहरीर व पेशकश है ज़ैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: बस एक बार मनाया था जश्न महरूमी, फिर इसके बाद कोई इबतिला नहीं आई। जिंदगी में जब इंसान महरूमियों को रोना धोना बनाने के बजाय इन्हें अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लेता है, तो वो अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर बड़ी सी बड़ी आजमाइश भी उसे मुतजलजल नहीं कर पाती। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान को कभी दुख ना मिले, बल्कि ये है कि वो दुख को भी सब्र, शुक्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करना सीख ले। सब्र और शुक्र इंसान को आजमाइशों से ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। जो शख्स हालात से लड़ने के बजाय उनसे सीखता है, वो अंदरूनी सुकून पा लेता है। जिंदगी की तलखियां इंसान के किरदार को निखारती हैं, अगर वो इन्हें मुस्बित अंदाज में कबूल करे। जब इंसान अपनी महरूमियों को भी अल्लाह की हिकमत समझकर कबूल कर लेता है, तो फिर आजमाइशें उसे तोड़ने के बजाय मजीद मजबूत बना देती हैं। यही सब्र और रजा का आला मुकाम है।
1: दोस्तों, इसी पैगाम के साथ नारंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने

0: वहीं में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
0: For the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness, and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurang Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331

0: चार 2-3-3-1-0-4-8-1 और तीसरा नंबर है 2-3-7-1-7-1-0-6। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
2: Thank you, Nikhil and Deepshikha. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
2: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
2: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई। इसके विपरीत एचडीएफसी बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
2: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks Quality Tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3%, and Realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined, and 200 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
1: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है

0: पे विराम अमरीका ने लगाने की बात की है और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज को बाजार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉरपोरेट रिजल्ट्स। तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉरपोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है।
1: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said, and I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
0: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
1: Right. So the larger picture remains positive, green, and very optimistic.
0: That is what.
1: All right. I and think particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
0: Yeah.
2: Deepshikha ji, abhi jo monsoon ki baat chal rahi thi, jis tarah se expectation thi ki monsoon ka performance is bar itna acha nahi rahega. To abhi results agar hum dekhe aur monsoon ko dekhe, to aapko kya lagta hai ki market aane wale kuch samay mein kaisa chal sakta hai?
0: देखिए अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफी हद तक पिकअप हो कर गई है। मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है। अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया। तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट।
2: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्टर जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग विक्टर।
3: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम। सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस? Because we have seen a lot of volatility in the gold prices.
0: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. And also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
1: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
0: Exactly.
1: And one of the diversifications is gold.
0: Gold.
1: You know, now do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
0: fluctuations. Exactly. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
2: Deepshikha, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise khareedari bade paimane par hui to mid cap aur small cap pe bhi hame

0: देखने को अच्छा खासा मिला है। तो ये राहत का एक कह सकते हैं कि असर है, या मतलब राहत की बात है, क्या अभी भी इसमें वोटैलिटी हमें देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं?
1: निखिल जी, देखिए, जिस समय तक वेस्ट एशिया में क्राइसिस ये जो है, इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट,
0: जी
1: तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है। तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है।
2: Right. So, Deepshikha, you know, when we talk of volatility, and you're saying that it's bound to be there, but is there something called range-bound volatility?
1: You know, if you look at if tomorrow, you know, the pause is lifted, there's again a crisis, there would definitely, it won't be range bound. So what I'm saying is, if you have a durable peace in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
2: So uncertainty filters down everywhere, and I
1: Everywhere,
2: think somewhere trying
1: exactly.
2: to fix it, put a find where is the method in that. Uncertainty is uncertainty, I think.
1: Uncertainty, yes. Yeah.
2: Right. We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
3: Hi, good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund, or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
1: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
2: Right. In fact, you know, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund
1: Exactly.
2: experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if a particular kind of a fund suits you, I think based on your risk appetite and based on your balance that you want to create, but I think balance has been a key which is advocated by most people.
1: Absolutely. I mean, if you have a diversified portfolio, you need to sort of have a diversified portfolio, keep a very balanced approach towards it.
2: Right.
0: दीपशिका, भी मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लगातार कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो ऐसे सेक्टर्स थे जो कहीं रुक रहे थे, उन्हें भी एक ग्रोथ मिल रही है। तो अभी हमारी जितने मतलब इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट जिसका हम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीजों को, तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
1: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है। तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है। आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज्यादा मिले। बट छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज्यादा ना लें।
0: जी
1: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें।
0: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, आपका प्रश्न पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट पंसार टीम।
1: नमस्ते शंकर जी।
4: मैडम मैडम माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन। Government declares inflation or whatever, RBI tries to control the inflation, but our real life inflation looks to me very high, and banks deposits for our senior citizens are never able to, you know, cover up the losses, or it never actually gives beyond the, it gives always less than inflation. So how, I mean, what is the solution for us to senior citizens? It is one thing, but we are not in a position to

0: take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
1: Shankarji, this is a question which actually is a big dilemma for policymakers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers, but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio. So you can also look at other investments, you know, just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio so that both your risks and returns are well balanced and met with.
2: Delhi se agle shrota hai Nitin hamare saath mein. Nitin ji, aapka sawal puchhiye.
3: नमस्कार
1: नितिन जी.
3: नमस्कार, मैं मतलब से ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप गोल्ड लोन सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो उसका प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगते हैं तो उससे रेट ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीद के तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं रहते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है. इसके लिए हम क्या चीज चेक करें कि जो हमारे को चांदी और सोना, सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन फिर शुरू कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
1: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं. देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है. लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है.
2: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
1: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है.
4: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
1: किस पर्पस से, अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस, आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है, तो आप
4: उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा
1: प्रोपोर्शन में. हाँ, तो आप वो खरीद के रख सकते.
4: जी जी, भिलाई से वी हैव रवि. रवि, स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
1: गुड इवनिंग रवि.
5: मैडम, मुझे जानना,
2: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से,
4: द कॉल ड्रॉप, बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. द कंपनीज स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. BEL standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
2: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया. हांगकांग के हैंगसिंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा. लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई

0: मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देगा या उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है। तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
1: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है, जो पिछले समय काफी गिरावट उसमें देखी गई थी, तो वहां ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है।
0: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस रवैया अपनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर से काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान ना हो। इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर।

0: करंट अकाउंट के लिए भी आपने जो पूछा उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड का गिरना.
1: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading nearly 0.7% up at 1,44,750 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 2,24,510 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी. दीक्षिका जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद निखिल.
1: एब्सोल्युटली दीक्षिका, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम. Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:44 और 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी जो आपने गीत सुना उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, SD बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से, ये खूबसूरत सा गीत होगा चितलकर की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं ये गीत, गीत मेरे मनमीत। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर, और आज आपके साथ है अर्पना।

अगला गीत ओपी नैयर की रचना है और गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। आशा जी की आवाज में ये गीत होगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

जा तो आप कहीं नहीं सकते, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, गीत मेरे मन मीत। अगला गीत आप सुनेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ है, एसडी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। और इसी के साथ अर्पना भी आपसे इजाजत चाहेगी। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, 11:55 और 44 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए गीत का आनंद लीजिए, अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक

0: की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the House of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. Our correspondent reports that for the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continue to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Rajya Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments, while Rajya Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into their future plans. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government informed the Supreme Court that it has set up a four-member special investigation team, SIT, headed by Inspector General of Police, IG, for the Lucknow raid, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिकंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। वीकेंड की छुट्टी कब पलक झपकते बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फिर आते

है सोमवार, ढेर सारी जिम्मेदारियां, काम का लंबा सिलसिला और भागती दौड़ती जिंदगी। पूरे दिन बस यही लगता है कि कब थोड़ा सा सुकून मिले और कब अपनी पसंद के गीतों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिले। और अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो सुकून भरा पल आ ही गया। अब वक्त है सारी थकान को पीछे छोड़ने का, मन को हल्का करने का और उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे जीने का जो हर तनाव को पल भर में भुला देते हैं।

दुनिया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वीकेंड की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई कि सोमवार अपने साथ जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त लेकर आ गया। दिन भर काम की रफ्तार ऐसी रही कि खुद के लिए दो पल निकालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है तो मन भी कुछ सुकून के पल समेटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सच है कि दिमाग के किसी कोने में कल सुबह के कामों की तैयारी भी चल रही है। अलार्म का ख्याल, अधूरे कामों की सूची और आने वाले दिन की योजनाएं। मगर जिंदगी का खूबसूरत संतुलन शायद यही है कि जिम्मेदारियों के बीच भी हम अपने लिए कुछ पल चुरा ही लेते हैं।

वक्त हुआ है 12:29 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़े दिल वाले फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। पिछले गीत ने बिल्कुल कहा कि जो पल है बस यही है, इसी पल को जी ले, अगले पल की चिंता में इस वक्त को मत गवा, यही पल है जीने के लिए और खुशियों के लिए।

कमांडो फिल्म का गाना आपने सुना विजय बेनेडिक्ट की आवाज़ और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी का असली हुनर यही है कि काम के बीच अपने सुकून के पल भी बचाए जाएं। अगर हम सिर्फ काम में ही उलझे रह गए तो मंजिल तो मिल जाएगी मगर सफर की खूबसूरती कहीं पीछे छूट।

जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जिम्मेदारियां भी निभाई जाएं और अपने मन को सुकून देने वाले छोटे छोटे लम्हों को भी पूरी शिद्दत से जिया जाए। काम और सुकून दोनों का साथ ही जिंदगी को संतुलित, खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाता है। शायद यही जीने की असली कला है और यही जिंदगी का सच्चा सुख भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितने सुकून भरे पल हैं ये। मीठा मीठा संगीत कानों में घुल रहा है और मीठी मीठी नींद पलकों पर धीरे धीरे उतर रही है। ऐसे लम्हों में लगता है जैसे सारी थकान कहीं खो गई हो और रात अपनी नर्म बाहों में हमें प्यार से सुला रही हो।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल

सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। दिल कब किससे और क्यों जुड़ जाए, इसका फैसला अक्सर इंसान नहीं कर पाता। फिर भी मोहब्बत में दूसरे की रजामंदी और एहसास की अहमियत बनी रहती है। इसलिए शायर बड़ी नफासत से पूछता है, तू बता दे प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं।

राजहट फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। कुछ लोग जिंदगी में बाहर की तरह आते हैं, उनकी मौजूदगी से हर लम्हा महक उठता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो अपने साथ कई अनकहे सवाल छोड़ जाते हैं। दिल बार बार यही पूछता रह जाता है, क्या राज था जो दिल में छुपाकर चले गए। शायद मोहब्बत की कुछ दास्तानें कभी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए उनकी खामोशियां भी उम्र भर सुनाई देती रहती हैं।

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में धुंधले जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की किताब से कभी मिटते नहीं। शायद इसीलिए गीतकार लिखता है, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। इसमें शिकायत कम है और वफा का एहसास ज्यादा है, जैसे कोई चुपचाप ये कह रहा हो कि अगर तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे यादों में भी रहना पड़े तो भी तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी।

बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये पुरानी संगीत की धुनें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि दिल के उन कोनों को भी छू जाती है जहां अनगिनत यादें चुपचाप बसी होती हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू है, अनकहे जज्बातों की गर्माहट है और रिश्तों की

शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जब कोई दिल में बस जाए तो उसकी पहचान जुबान की मोहताज नहीं रहती। इस गीत की मासूम शरारत और प्रेम की गहराई आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी अपने दौर में रही होगी। पुराने गीत सचमुच कम शब्दों में बड़े बड़े एहसास कहे जाने का हुनर रखते थे।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। क्या ही नाजुक और दिलकश अंदाज था इस गीत का। महज एक सवाल और एक जवाब में मोहब्बत का पूरा जहां समा गया है। जिसका नाम हर धड़कन के साथ लिया जाता हो, उसका परिचय शब्द

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, कितनी प्यारी चुलबुली और मन को गुदगुदा देने वाली धुन है ये। इस गीत में प्रेम का निमंत्रण भी है, अपनापन भी और एक मासूम सी शरारत भी, जैसे कोई अपने प्रिय से मुस्कुराते हुए कह रहा हो, एक बार मेरे दिल में जगह बना लो, फिर कभी उसे छोड़कर मत जाना, और फिर छम छमा छम छम। इन शब्दों की झनकार गीत में ऐसी मिठास खोल देती है कि अचानक ही होंठ मुस्कुरा उठते हैं और मन

जेलर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। प्यार जब दिल में उतर जाए तो फिर चैन और आराम दोनों ही कहीं पीछे छूट जाते हैं। दिल हर धड़कन में उसी का नाम दोहराता रहता है। तभी तो कहा गया है, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ।

अनुराधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि शंकर ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वक्त आगे बढ़ता रहता है मगर यादें वहीं ठहरी रहती हैं। जब उन पलों की खुशबू फिर से मन को छूती है तो दिल से और होठों से यही आवाज आती है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए।

चार दिन और चार रातें फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 33 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। दर्द की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है, कभी वक्त उसे कम नहीं कर पाता तो कभी दवा भी बेअसर रह जाती है। इंसान हर दर पर उम्मीद लेकर जाता है, हर रास्ता आजमा लेता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादों के सहारे जीना सिखा देते हैं। तभी तो ये एहसास दिल से निकलता है, न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ा

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। रात सुरमई, जैसे किसी चित्रकार ने आसमान पर गहरे नीले और काले रंगों से एक खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद यही वो वक्त है जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है और दिल अपनी ही धड़कनों को सुनने लगता है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना। मन्ना डे और उषा खन्ना की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, कितनी खूबसूरत बात कह जाता है ये भाव। जब दो सुर एक दूसरे में इस तरह खुल जाएं कि उनमें अलगाव की कोई रेखा ना बचे, तब केवल एक धुन जन्म लेती है जो समय की सीमाओं से परे चली जाती है। शायद इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम अपनापन है।

दस्तक फिल्म का गाना आपने सुना, मदन मोहन की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये गीत विरह, अकेलेपन और अनकहे दर्द की ऐसी अभिव्यक्ति है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल संगीत दिल की बात कहता है।

फिल्म चोरी चोरी का गाना आपने सुना अफरोज बानो की आवाज में, संगीत दिया साजिद वाजिद ने। सावन की पहली फुहारें बरसते ही जाने कितनी बेटियों को अपना मायका याद आ जाता है। झूले, पेड़ों की हरियाली, माँ की ममता और बाबुल का स्नेह, सब कुछ जैसे मन को पुकारने लगता है। तभी तो ऐसे गीत पीढ़ियों से दिलों में बसे हुए हैं। वो केवल मौसम नहीं, रिश्तों की खुशबू भी साथ लाते हैं।

वक्त हुआ है 2:27 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

इम्तिहान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शाम तो हर रोज वैसी ही होती है, मगर हर शाम का एहसास एक सा नहीं होता। कभी वही शाम यादों की चादर ओढ़ लेती है, कभी किसी अपने की आहट बन जाती है, और कभी यूं ही दिल को सुकून दे जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गज़ल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अमीर मीनाई ने ये गज़ल लिखी और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। महबूब के चेहरे से नकाब धीरे धीरे सरक रहा है और उसकी खूबसूरती भी परत दर परत सामने आ रही है। उस नज़ारे का लुत्फ जल्दबाजी में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:47 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रिश्ता कागज का, फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

फिल्म आशा से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 10 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

किसी से जान पहचान होती है, पहली मुलाकात होती है, और कई बार पहली मुलाकात इस तरह की मुलाकात हो जाती है जो जीवन भर की याद बन जाती है, या कहें कि रिश्ता भी बन जाता है। इसी तरह की पहली मुलाकात से सजा ये गीत, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी आशा भोसले की स्वरों से सजाइएगी, तभी आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत था राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम दो दिलों की दास्तान। ये गीत आपने सुना।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वर थे। फिल्म का नाम हमराही जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों, रात का समय और नींद न आने का सबब भी खोज रहे हम कई बार, ऐसा हो भी जाता है साथियों, कई बार नींद नहीं आती, ऐसे में ओल्ड कोल्ड सुरीले गीत हम सफर बनते हैं, हमराही बनते हैं, तो दिल को ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है।

गुलशन बावरा की लिखी रचना आपने सुनी साथियों। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों का जादू, फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। साथियों, जब तक जीवन में कोई हमसफ़र नहीं आता तब तक बात ही अलग होती है, लेकिन जैसे ही हमसफ़र जीवन में प्रवेश कर लेता है जीवन भर के लिए, जी हाँ, तो बात बिल्कुल अलग ही हो जाती है। दुनिया नई नई से दिखने लगती है और बहुत सी हमारी बातें बदल भी जाती हैं, यानी सकारात्मकता का पुट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।

ट्वेल्व ओ क्लॉक इस फिल्म का गीत साथियों अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों से सजा ये नगमा था। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। ओपी नैयर का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये प्यार भरी रचना थी।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हमराही फिल्म का नाम

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत आपने सुना प्यासा फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और जब साथियों दिल से दिल की डोर बंध जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, यही कहते हैं हम सभी। क्या कहते हैं?

और हम भी इन सुंदर गीतों की डोरी से बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, यही लौट लौट करके आएंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही एफएम कोच 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना, 1969 रिलीज इस फिल्म का नाम धरती कही पुकार की। साथियों, उपहार तो बहुत लिए दिए जाते हैं। जाहिर उपहार जब हम किसी को देते हैं तो बहुत सोचा समझा जाता है कि भाई क्या ऐसी चीज दें जो काम भी आए, अच्छी लगे। इसी तरह की बातें हमारे जहन में होती हैं, लेकिन इस अगले गीत में उपहार दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या उपहार आ रहा है, स्वीकार किया जा रहा है या नहीं, सुनते हैं इस नगमे में।

जी हाँ, स्वीकार हो गया इनका जो गिफ्ट ये दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, और दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, भाई ऐसा उपहार तो क्या बात है। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत, शैली शैलेंद्र ने लिखा था, शारदा और किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत में। फिल्म का नाम वचन, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब सुंदर सवाल, सुंदर जवाब से सजा ये गाना।

शिकारी फिल्म से ये रचना भी आपने सुनी। 1963 रिलीज ये फिल्म थी। साथियों, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, जीएस कोहली का संगीत और फारूक कैसर की लिखी रचना थी। साथियों, बात जब हम करते हैं तो तारीफ का जो अंदाज होता है वो बहुत निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। तारीफ भी उसी तरह से तो होती है। और हम तो कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, जो गीत अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, घटना अच्छी लगे, उस बात घटना या कोई भी विषय हो इस दुनिया की, उसकी तारीफ बेबाक रूप से पारदर्शिता के साथ बिल्कुल ईमानदारी से कर देनी चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं यहाँ।

मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज उसी सजा ये गीत आपने सुना रूठा ना करो। ये था फिल्म का नाम। 1970 रिलीज फिल्म। चितलकर रामचंद्र का संगीत था। हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये नगमा।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रही हैं छाया फिल्म से। 1961 रिलीज फिल्म सलील चौधरी का संगीत राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया तथा भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। उन्होंने निरंतर सीखने पर बल दिया और पेशेवर विकास के लिए SEBI के समर्पित क्षमता निर्माण विभाग और शिक्षा पोर्टल का उल्लेख किया। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय वाय प्रातः के 4:11 और 6 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना, फिल्म का नाम हम सब

उस्ताद हैं, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। साथियों, जब कभी अकेले तन्हा होते हैं और बहुत से प्रश्न कई बार मन में होते हैं, बहुत सी उलझनें होती हैं, ऐसे में जब हम याद करते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बहुत बहुत अपना है, और हमें लगता है कि उसे याद करके शायद हमारे मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा, इसी तरह की भावना होती है। और वाकई ऐसा होना भी चाहिए, ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में जिन्हें हम सोच करके भी खुश हो सकें, गर्व महसूस कर सकें।

गुलजार की लिखी ये रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफी शारदा की आवाजों का जादू, फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।

राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना भी आपने सुनी। फिल्म का नाम भाभी, 1957 रिलीज। ये फिल्म लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत दिया था इस गीत के लिए चित्रगुप्त ने। साथियों, अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसकी आभा विद्यमान है और हरी घास पर कुछ है जो चमक रहा। क्या है वो, किसका है?

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों। सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना, फिल्म का नाम परख, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में।

संकल्प फिल्म से ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सुलक्षणा पंडित और विनोद शर्मा की आवाजें थी, खय्याम का संगीत, कैफी आजमी की लिखी रचना। और आइए आप थोड़े से बच्चे भी बन जाते हैं। बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है साथियों जीवन में, तभी तो तनाव मुक्त रह पाएंगे। तनाव तो होते ही है, समस्या परेशानी।

चलती ही रहती हैं जीवन में, लेकिन सुंदर संकल्प के साथ, आगे बढ़ते हुए सकारात्मकता के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहें तो जीवन में परेशानियां जो आएंगी वो जल्द ही चली जाएंगी या हमें कम महसूस होंगी। आइए सुनते हैं ये सुंदर रचना।

मधुबाला झावेरी की आवाज से सजा ये गीत हमने सुना। हंसराज बहल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जग्गू।

शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। शकील बदायूनी ने की लिखी रचना थी और नौशाद का संगीत था। साथियों हमारी सीमा प्रहरी विपरीत परिस्थितियों में भी दिन हो रात हो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम सभी की रक्षा करते हैं, उन्हें उन सबको नमन करते हैं हम। और जब उनको घर परिवार की याद आती है तब कई बार ऐसा होता है ड्यूटी से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है या कई बार वो अपने घर की तरफ चल पड़े होते हैं, रास्ते में होते हैं, मंजिल तक पहुंचे भी नहीं होते और रास्ते में ही उन्हें संदेश मिलता है कि तुरंत वापस आ जाएं, एमरजेंसी है। ऐसा भी होता है साथियों। तो और जब छुट्टी के दिन आ जाते हैं कि भाई छुट्टी होने वाली है अब तो घर जाएंगे हम, तो उस समय क्या माहौल होता है, उसी तरह की परिस्थिति पर ये गीत बहुत ही सुंदर सजा है हमारी फिल्म जगत में।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आज का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना साथियों। 1961 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और कमल बाराट के स्वर थे इस गीत में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, भरत व्यास की लिखी रचना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती सावित्री।

लता मंगेशकर की आवाज से सजाई ये गीत आप सुन रहे हैं अग्नि परीक्षा फिल्म से। 1981 रिलीज ये फिल्म सलिल चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना और आवाज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये।

लता मंगेशकर हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 रिलीज फिल्म, हेमंत कुमार का संगीत, मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह माफ कीजिएगा

0: बार फिर पढ़ ले, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमफोर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। PTI का दावा है कि पिछले महीने JAAC के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोंग गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारतोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में दूसरा स्थान हासिल करके एक और रजत तक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के तीसरे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. in the

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रही हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 5:11 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक लेकर जाता है।

हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से हमने आपको सुनवाया। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सरदार मलिक का संगीत था और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

बैचू बावरा, अभी आपने इस फिल्म से ये रचना सुनी। 1952 रिलीज ये फिल्म आवाजों का जादू था उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर का। नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना थी। साथियों, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ ये धरती भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है। इस तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके ज़रूर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

ये फिल्म नौशाद का संगीत जानिसार अख्तर की लिखी रचना। साथियों, भोर का समय, किसी घर में नृत्य कार्यों की शुरुआत तो कहीं स्कूल दफ्तर जाने की तैयारी, और ऐसे में साथी बनते हैं ये गीत जो हमें और भी ऊर्जावान और आशावादी बनाते हैं।

आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज उसी सजा ये गीत, फिल्म का नाम अभी तो जी लें। 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसी ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।